मखल मखल के थोरम का याना लेक्चर उइदुन संदुक चरिबा अदोंकी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल नी हौजिक चैनल असे द संदुक चरी अतोप मंगालदा इंडस वैली सिविलाइजेशन थोरम मसे एससीईआरटी की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट की तेंग बांगल उइनना संदुक चब थोरम नी

0: आकाशवाणी इम्फाल हौसिक मणिपुरी मरू इब पाव ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौसिक फावगी मरू इब पाव दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तोंगान तोंगान बा लेबाक मंगा के नुमित तरुनी की ओइब खोंसेत हायंग दी हौरगनी खोंसेत असिदा प्रधानमंत्री ना यूनाइटेड अरब इमिरेट्स नेदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे मसुंग इटली दे सटकनी नई दिल्ली दंगरंग पोमी सिंह उन्नबदा मपाल थोरम मंत्रालय की सेक्रेटरी सी बी जोर्स ने हाई प्रधानमंत्री की खोंसेत असी की आहान बसरुकता हायें यूए इदे थोंगनी असम सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल था से की कुंतरुकता राज्य विधानसभा तो पुतोग लगनी राज्य की मंत्रिमंडल की मिफम लोरे बतुंग द पोमी सिंह द मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाई असम विधानसभा की अखंड मिफम मा था से की कुंतमाथवे की कुंतरुक पाव पांथोक नबा राज्य की मंत्रिमंडल ने वारेब लौरे सरकार ने लेबाक असिदगी सिनी मरुआइना रो सुगर व्हाइट सुगर मसुंग रिफाइंड सुगर मपालम द थातोपगी थाबक सेय असिगी सेप्टेम्बर फाव अथिंग मथमख्रे अथिंग बसी CXL मसुंग TRQ कोटा गी खुथांग द USA मसुंग यूरोपियन यूनियन द यावरोय अमेरिका गी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ngरांग चाइना गी बैसिंग द थुंख्रे राष्ट्रपति ट्रम्प ना चाइना गी राष्ट्रपति सी जिनपिंग गा मिफम मा पांगथुकतुना नोंसुप एशिया द उइरि बा फिबा मसिगि मतांग द खनेगनी नुमि नेलि गी वइबा मिफम मा दु मसिदि गी होगनी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की नुमित निनी सथगतब मिफम असिदगी नई दिल्ली हौरगनी मिफम असिदा मपाल थोरो मंत्री डॉक्टर एस ओ शंकर दा सभापति ओइने सरुग यागनी मिफम असिदा ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर सिंह अमसुंग अतै मरी लेनेबा लेबाक सिंह मिहुत सिंह सरुग यागनी अमसुंग इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट अंगसी धर्मशाला की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दा किंग्स 11 पंजाब का मुंबई इंडियंस का सानेगनी मैच नुमिदांग पुंग तेरेट मखाई दिगे होगनी पाउ लेजरे

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब?
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: के यादों गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोड़ा मसीद लेपतना ताबीरी मथंग लख एस एम एस असना सेकमाय अवांग लेकाई सनाहल लेशेंबी मणिकुमार मरुप सिंह ताबीरप एस एम एस नि खनबीरखलीब इसेना लमहेंबी थमोय सिना फिल्म सगोलसेम तिजेंद्र की खोंजल राजेन येकुपमना सैरेंब तोंब थांगजम अमदी ओइनाम गीत अनी पुन्ना सैरंग बैसे खुदोल तमजरी तमिनी से।

0: के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो बी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: मथंग दमक तामिन से फिजंग मरुमदा फिल्म से दगी नाबोय मदि पुष्परानी गे पुनबा खोंजेल दा तंपासना आरके न सेरिंगबा जितेन खाइदेम न सेरंग बेसेनी इसे सिबु खनबि रखलिबा मरुब सिंगना थांगमैबन लाइजिंग उमंग दगी लाइश्रम नोंग्याय अमदि इमुंग मनुंग हानि बिरकपनी इसे खुदुल तमजरी तामिन से

0: लौसिन बिहौरो पुजरकले लौसिन बिहौरो इरमदोंगि लैपाकले हाउगा फजना चानराबा इसिं वाटपा अतोंग बलोफम इसिं तुंगबा अकुटपा लोफम अनिमक्त थाबे यारबा थौथौक यामने लैबा चाबदा हाउरबा नुमिचाम तराद लोकपा शुपनगि केजी द लुपा चाम हुंफु खक्तंग शुपीबा फौदि 55R95 55R95 मचेलबा एग्रो महिंद्र अलुचार फंगफम मालोम बाजार एयरपोर्ट रोड तलेंगथोक पिरकलो लौसिन बिहौरो
1: Good morning, Manipur ki aroiba SMS oina lakhochariba isai Boyton Mangkre film dagi Surenji Khonjelda Ranjit Ningthawjana sairingba Jiten Kumar Nawremna sairangba isaini isai sibukhanbi rakliba marupna gari maning lekai dagi Joy Kumar Madi Benson

मखल मखेल की थोरम को यादुम ना आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगी ताबिरी हौसिक पुंगफम से दा पुजरकली सैसकपा अमगी इसई दा हामोम सदानंद न सकपा इसई खुदोल गे हान बदा ताबिर से लांग फिल्म से दगी सैसकपा से की खोंजेल दा मोइरांग थेम इनाउन सेडिंग बा आर के जितेन ना सैरांग बैसई

हवरम संदोक तो नेता हंजारी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल ने हौजिक लौगी रेसी टोंगान टोंगान ब सैसक पसंद की गीत

गीत के रूप खुदोल द तमिने सी सफकत नपिगनी अली खान अमेरी सुनी दी जोहन के अपन बखोंजेल द गीत

0: ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मार्केट के बारे में क्या
4: परफॉर्मेंस का बोलो?
3: नहीं तो पूछे।
4: मार्केट ट्रेंड देख,
3: सुनने में आएगी
5: आज की खबर देख।
6: पहले ही बोला था ब्रो।
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
4: मेरे दोस्त ने बोला।
7: देवी जी की सुनो।
8: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदोकचरी रेडियो लीला थवाईगी मनी सनामतुम लीला इबा मुतुआ तुम्बा लीला पुथोकपा निंथौजम लोकेंद्रजीत सिंह पुथोकपा तेंबांगबा सुभाष अथोकपम हौजिक लौबीरसी रेडियो लीला थवाईगी मनी सनामतुम

0: सिस्टर देसिंग दो लोरगा हिदाल तो खर कापू सोंगी अशोक पछि गे मियो यावी रबदी हिदा खर इजगे कादम तला पियो इंजेक्शन ओ चंगीरो चंगीरो से इंजेक्शन गाक्तनी खरा दी थुबीरो नसीदी यूम द खरंग न हनगे खमनी हेक तयादी नुथिन के राउंड सत्र फारे सथो उरगे इबी मोगी फिबम सी याम फगले हिदाक सिंसी सांग नाइन चारबदी पुंफा फरानी दा मितुम त यंग जगे लाउ नुम तो पंग तो पियो अदुम अदुम आ आ आ यारे यारे यारे लई दुगम त तिंग थोक पिरो यारे यारे सीधी याम फगले सिस्टर बीपी चेक तो ए सूंगी अनाब की सेबारी से यामन खरे अनाब सुपो था खादर सेबारी अम ले अत मपान ले अनाब तो सोम लेथो पीर खुद तो येजगे यारे यारे लेहौदी हल्ले हिदा अमग इरंगे मसी नोंमद अम्मम्त चागदबनी चाब थकपदि खर सिक्सिनसि
1: एखोइद खुद हेक थारपद मफम से पुम चाइ थाना नखोय म त वांगांग ब छुगे यादि बा पिदिना बा एखोइ ब फाम बे हे वनबद नखोय कि नथक त एखोइ न करी तोरप कि हबदो येमो एखोइ कि असोपदो कादु द पसल वासि द तारिबा नर्स डाक्टर पुन मगना अखोई अशोक से हानी यंग दोपन हानबरा हानी यंग दोपा
0: ये बुआ अशोक से अखोई न लाये यंग लगल लुए मसीदा लाओ खोंग दुना नुम मैं ऊपर से सुम दी
1: अखोई की सिक्योरिटी ना खुद थारक न बताओ बस की दमन इशां आ थोक न भोने तो भैया आते बनी ने
0: ओ ओ ओ ऐ भाप तारे भाप तारे वारों भी आते अखोई की हॉस्पिटल से दा सखंग दब खरना था मगी ममांग दब बोम लंग चिल्लम बदगी प्रजा की खलगा सिक्सिन जब ओइना मणिपुर की छिपाई खर सु थम्बनी न खोई लाख पसी दा अमुक सु चथर कदर चिंगन दुना तो बसु ओइरम बया
1: कैनु ने डॉक्टर युवा दुबो हा ऐ खोई बुला ने कंफर्म इ ठोक ठोक दे ने
0: इबुओ तब ठोक तब ठोक म फम सि दी हॉस्पिटल नी नहांग दा ऐ खोई दा अकन बवाई सीजन न गदब नति सीरियस होइबा अनाब कया सुले
1: म फम सि दा पुखलकपा अनाब खुदिम संग लैजदबनी खनगदबनी नकल लमरोम दन नखोई दी नखोई की मी द याम सिक्सिन ना अना बसिंग सी येंगे ए अदुना ने नसी दी नखोई खुदी म वार्निंग तो बताय कागबरा
0: ये बुंगो आ कई दो गई दने ए खोई द अना बुबु मिसंग मी खाई नाइने लायंग दी अमुक तो दी खंतो भाप ता दब दी ए खोई न तरग न हा खुदोंग थिब नंग बसु या मसी द मिस थियो ग दब दी हॉस्पिटल छि दनी
1: फरे ए खोई संगल पद नखोई ने तौरी बसे सिल्लर वे नोमेने सोखलाबा एखो यहुन से खरथु न फासे पिनो चखिबा यानम तो हन बिस मफम सि तारीबा नर्स डॉक्टर पुनमक एखो चति मखै ठोके बे यारे को अमत यारो अना बसिंग छु बेसिंग अदु दकी हेंदो प मत यादि एखोई ने फासि लिबा सिक्योरिटी नखोई छु
0: सिस्टर नखोई लोइन ले रे खरथु न त तोक्सि देसिंग तौरगा बिदेस गेलग दिने यारनी अशोक सिंह से कसु तौर मखूम छोप सिमी पंच चल लुखीन
1: खांगे खांगे थांगे
0: वारोदी यादे आई वादी हाउगे लमदम सिद खुलाई पाई मरी बाकी दमकतनी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

इसे इसी तहन जखी बगल लोइनना गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरम लोइसिंजरी थौरम असिबु हौबदगिना लोइबा फाउ ताबिखिबा अमदी मेसेज थाबिरक्तुना सरुक याबिरखिबा पुमनमकपु अमुक कहन्ना थागतपा फोंगदोकछरी अदुम थौरम ताबिरिबा सी आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजे गीत मालागी थौरम गिदमा खुराइजम बेबी रोशनीदा खुचिन नजरी

नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज गुरुवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत।

अभी आपने सुना एआर रहमान के संगीत निर्देशन में रोजा फिल्म से एक गीत, आवाज़ दिया है मिनमिनी ने।

अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वरों में एक गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना दिल से फिल्म से लता मंगेशकर और एम जी श्री कुमार के युगल स्वरों में एक गीत, शब्द रचना गुलजार के हैं और सुरों से पिरोया है ए आर रहमान ने। श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के एफएम संगाई चैनल से कार्यक्रम सदाबहार गीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी।

अभी आप सुन रहे थे ये वादा रहा फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में एक गीत, शब्द रचना गुलशन बावरा की है और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

और कुमार सानू के युगल स्वरों में एक गीत। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।